उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार मुझे अपनी जनाब से औलाद सालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है।

0: फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें और तुमको हकीकतुल हाल तो मालूम हो ही चली है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और औरतों को बुलाएं, और तुम अपने बेटों और औरतों को बुलाओ, और हम खुद भी आएं और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक खुदा से दुआ और इल्तजा करें और झूठों पर खुदा की लानत भेजें।
1: إن هذا لهو القصص الحق وما

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन, डॉक्टर करार हैदर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर।

0: अरे आप जानते हैं हम हफ्तावार प्रोग्राम करते हैं FOSD के तहत। हमारे सातों के सातों डिपार्टमेंट्स अपने अपने रिकॉर्डिंग करवा चुके। आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है और यकीनन आप इसको पजीराई बख्शेंगे। आज इस प्रोग्राम में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं, क्योंकि हमारे FOSD की डीन, जो कि हालिया दिनों में अमेरिका तशरीफ ले जा चुकी थी, कुछ दिनों के लिए वापस आ चुकी हैं, और हमारे उनकी जो नेमुल बदल थे इस उनके जो वक्ती तौर पे काम कर रहे थे डॉक्टर अख्तियार फरूख, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और आप ये मानेंगे कि ये FOSD को ये एजाज हासिल है कि हर जिद्दत इख्तरा नई चीज़ FOSD की तरफ से ही होती है। और आप ज़रूर बताइएगा अपने आरा में। मैं बग़ैर किसी तवक़ुफ़ के, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए बढ़ना चाहूँगा अपनी डीन की तरफ, जिनका नाम है डॉक्टर हाफिज़ा रिजवाना कौसर। डॉक्टर साहिबा, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर करार फॉर इनवाइटिंग अस। मेरा जो है एकेडमिक जर्नी जो है दैट वाज स्टार्टेड इन 2012 व्हेन आई कंप्लीटेड माय PhD इन मैथमेटिक्स फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। और इमीजिएटली व्हेन आई डिफेंडेड माय थीसिस इन जून, 6th of June 2012, तो 8th जून को मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ज्वाइन कर ली। तो मैं जस्ट थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँगी कि ये यूनिवर्सिटी जो है, मुझे यूँ लगता है ये मेरा घर है, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने 3 जगह पे इंटरव्यू दिए, 3 डिफरेंट जगह, तीनों जगह पे मैं सिलेक्ट हो गई। लेकिन जब मेरी बारी आई सिलेक्ट करने की, तो आई सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फॉर माई प्रोफेशनल करियर। मैंने बिजनेस स्कूल में स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के, और मैं आई वाज द मैथ टीचर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। एट दैट टाइम आई वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय माय रिसर्च वर्क। उस वक्त मुझे रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड्स भी मिले फ्रॉम पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। 5 years इसी तरह चले एंड आई वाज प्रमोटेड टू द एसोसिएट प्रोफेसर। इन द मीन टाइम प्रोडक्टर टेकन द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द फैकल्टी ऑफ साइंसेज, और हमने 3 डिपार्टमेंट्स के साथ फैकल्टी ऑफ साइंसेज को लॉन्च किया। पहले फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हमने शुरू किए इन 2017 एंड आई वाज अपॉइंटेड एज अ डीन ऑफ दैट फैकल्टी। उसको बढ़ाते हुए हमने उससे अगले साल उसमें ADP प्रोग्राम भी स्टार्ट किए, और फिर हमने जूलॉजी बॉटनी भी स्टार्ट किया। तो ये सिलसिला इसी तरह 3 साल तक चलता रहा, और एक साथ इन पैरेलल एक फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज भी चल रही थी, जिसमें सारे बायोलॉजी के प्रोग्राम थे, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 2022 में यूनिवर्सिटी का चार्टर चेंज हुआ, तो बोथ फैकल्टी वर मर्ज टू फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई वाज सिलेक्टेड एज द डीन ऑफ दैट फैकल्टी।
0: थैंक यू वेरी मच मैम, इस पर हम दोबारा तफसील से बात करेंगे। आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, और एक चीज जो आपने बताई मेरे जहन में, एक जाहिर मुझे हिस्ट्री से भी लगा हुआ है, 6 जून का आपने जिक्र किया। 6 जून आलमी सियासत में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी वो दिन है, फौज के लिहाज से भी। 6 जून 1944 को जो एलाइड फोर्सेस थी, इन्होंने फ्रांस नॉर्मंडी में हमला करके हिटलर की फौजों से आजाद करवाया था। तो आप भी 6 जून को यहाँ तशरीफ लाई, मेरे जहन में ये आ गया, तो मैं आपसे जिक्र कर दूं। नहीं जी, सामईन आपको अच्छा लगा होगा, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, जो कि नन अदर देन वेरी फेमस रिसर्चर, वेरी फेमस स्कॉलर, हिज नेम इज डॉक्टर अख्तियार फरूख। ओवर टू यू डॉक्टर साहब।
2: थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस टुडे। तो सबसे पहले जो मेरी एजुकेशन जर्नी है, तो बेसिक जो 8th class तक मैंने गुजरांवाला टाउन से ही मैंने किया, फिर उसके बाद फिर कराची से सारी मेरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट, फिर BSc ऑनर और MSc मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया। फिर फर्दर उसको हायर स्टडी के लिए फिर मैंने 2 पोस्ट डॉक्टर्स किए हैं बाहर, जो है जो अकेडमी ऑफ साइंसेज फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, उसकी फेलोशिप्स के ऊपर जो है, वन इज़ फ्रॉम ब्राज़ील और दूसरा जो है वो मलेशिया से है। तो ये छोटी सी जर्नी है मेरी जो एजुकेशन की है। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना जो करियर है वो कराची यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया एज अ कोऑपरेटिव टीचर जो है ड्यूरिंग माई PhD। उसके बाद फिर PCSAF पेशावर में चला गया, फिर वहाँ से वापस आना शुरू हुए, इस्लामाबाद में PCST में सर्व किया, जिसी यूनिवर्सिटी लाहौर में सबसे ज़्यादा वक्त मैंने गुजारा, 10 साल मैंने वहाँ सर्व किए, वहाँ रजिस्ट्रार भी रहा। फिर उसके बाद फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में, और ये मेरी 6ठी है यहाँ पे, जो सितंबर मेरी बर्थडे के ऊपर मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, 15 सितंबर 2022 जो है। तो एज अ प्रोफेसर फुल प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एंड उसके साथ ही जो है वो आई एम थैंकफुल टू दी द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसी वक्त ही मुझे एक दो हफ्ते के अंदर जो है मुझे एक एडिशनल चार्ज दिया गया डायरेक्टर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जो है तकरीबन 16 प्रोग्राम्स अभी हैं जो कि हम रन कर रहे हैं.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह. डॉक्टर तारुफी कलमात का शुक्रिया. यहाँ भी मुझे एक इत्तेफाक हुआ, आपने सितंबर का जिक्र किया. सितंबर में मैं टेलीविज़न पर प्रोग्राम भी करता हूँ. हम जो आपको पता है पाकिस्तान डिफेंस डे मनाते हैं 6 सितंबर को, तो आप दोनों हमारे डीन हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं उन दोनों का इत्तेफाक किया. ऐसा ज्वाइनिंग वक्त और ऐसा महीना है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी दोनों बड़े तवज्जो के हामिल हैं. अब मैं बगैर किसी वक्त ज़ाया किए डॉक्टर रिज़वाना आपकी तरफ बढ़ूंगा. थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपका जो फील्ड ऑफ रिसर्च है और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में हमारे सामने इनको बताइएगा.
1: जी सर, मेरा एरिया ऑफ रिसर्च जो है जनरल रिलेटिविटी है. तो मैं समटाइम अपने आप को कहती हूँ कि मैं आइंस्टाइन की पोती हूँ. तो बिकॉज द थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डेवलप्ड बाय द आइंस्टाइन इन 1916. तो 100 ईयर्स हो गए इस थियरी को हम लेके चल रहे हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वर्क है और इसके बहुत ही एप्लीकेशन हैं एट द लेवल ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. बहुत बड़े बड़े जो हैं रिसर्च स्पेस सेंटर्स काम कर रहे हैं और जो कि जनरल रिलेटिविटी की बेस पे उसके टेस्ट के बेस पे जो आइंस्टाइन ने थ्योरी प्रेजेंट की इक्वेशंस प्रेजेंट की उस पे बड़े बड़े हम रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, बड़ी नोवेलिटी लेके आ रहे हैं. तो नासा भी मैंने विजिट किया. तो ये जो है जनरल रिलेटिविटी सपोर्टिंग सब्जेक्ट है मैथ डिपार्टमेंट में और फिजिक्स में दोनों में. तो माई PhD वाज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें एज अ रिसर्च एरिया मेरा जनरल रिलेटिविटी था. उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक स्विट्जरलैंड से किया. तो वहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में ये ऑफर हो रहा था तो वहाँ से मैंने किया. और बल्कि आइंस्टाइन ने बहुत सारा टाइम तो वहाँ स्विट्जरलैंड में गुजारा. तो उनकी जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पोस्ट डॉक के लिए गई तो उनके लिए पूरी गैलरी डेकोरेटेड होती थी, उनकी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी होती थी. और बर्न में उनका घर भी था स्विट्जरलैंड के, वो भी मैंने विजिट किया. तो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इक्वेशन का सिस्टम जो मैथमेटिकल और फिजिकली उन्होंने ये उसको इंट्रोड्यूस करवाया है. तो मैं समझती हूँ कि हज़ारों और PhDs भी निकलेंगे, मतलब देर इज़ अ बिग मार्जिन इन द रिसर्च एरिया.
0: थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने बड़ा तफसीली तारुफ कराया. इससे कबल कि हम डॉक्टर अख्यार साहब की तरफ दोबारा बढ़ें, हम बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ. गेम आ जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: मेरे मजे सुनने वालों, वेलकम बैक टू द शो, नन अदर देन FOST फैकल्टी आवर। और अब मैं बढ़ूंगा अपने दूसरे मेहमान की तरफ, डॉक्टर अख्यार फारूक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आपसे भी वही सवाल होगा मेरा कि अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताइए सामईन की दिलचस्पी के लिए।
1: जी शुक्रिया सर। जैसे मैंने पहले क्या है कि ये मैंने PhD जो है वो केमिस्ट्री में की है, तो बेसिकली आई एम द केमिस्ट, और उसके अंदर फिर सब ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और इसी से लिंक करते हुए फिर हमने जो है वो जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, डैट इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा रोल है इसके अंदर, इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको जो है वो फॉर्मुलेशन के अंदर जो है, तो इसी एरिया के अंदर जो है वो हम तकरीबन को पिछले 15 साल से इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द पायनियर हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड इन पाकिस्तान। और इसी को फिर देखते हुए जो है वो मैंने तकरीबन कोई 25 कंट्रीज होंगे दुनिया के जहाँ पे मैं फेलोशिप्स के ऊपर अपने जो मकाला जात है उनको पढ़ने के लिए मैं गया। और उसके बाद जो है फिर इन्हीं इसी रोल को देखते हुए कुछ नेशनल इंटरनेशनल मेरे पास भी रोल हैं, जैसे मैं जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो टेक्निकल कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, PSQCA का दायरा है, और उसका मैं चेयरमैन हूँ। फिर इंटरनेशनल देखते हुए ISO की एक नैनो टेक्नोलॉजीज की कमेटी है, उसके अंदर मैं मेम्बर हूँ। तो इस तरह मैं जो नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहे हैं जो UCP की प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड, उसके अंदर जो हमारा बेसिक इंटरेस्ट है, जो मेन इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। तो वो हम कोई एग्रीकल्चर साइट के ऊपर है, कुछ नैनो कॉस्मेटिक्स के ऊपर है, नैनो फ्रेंसिक्स के ऊपर है, नैनो एंटीबायोटिक्स ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर है। तो ये हम इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इसका जो है वो हम UCP के अंदर भी हम जो है वो ज़्यादा हमारी इंटेंशन यही है कि हम प्रोडक्ट फार्मूलेशन के ऊपर जो है हम फोकस करें बाय यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी और द न्यू इन्वेंशन विच वी आर वर्किंग विद इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द सेंट्रल पंजाब। तो ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ है मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट।
0: बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रिजवाना से सवाल करने से पहले एक और चीज मुझे याद आई। आप जानते हैं मेरा भी ताल्लुक फिजिक्स से है, और डॉक्टर साहब ने बताया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। आप जानते हैं आइंस्टाइन के ये दो उनकी खसूसियात थी, एट्रीब्यूट्स थे। उन्होंने जो है आप जानते हैं सारे, पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। और आइंस्टाइन दुनिया के वाइस साइंसदान हैं जिन्होंने बगैर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हुए सिर्फ उन्होंने जो लिखा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस पर उनको 1921 का नोबेल प्राइज मिला। तो मैम ये मेरा रब्ता आपसे हो गया इस मामले में फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री, दे मूव यू नो विद वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा हट के एक सवाल, ये शायद आप नहीं तवक्को कर रही होंगे, मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अचानक ही हमें पिछले सेमेस्टर में पता लगा कि आप 6 महीने की छुट्टी पे जा रही हैं, आप अपना जो है एक सेमेस्टर ऑफ ले रही हैं। नहीं पता लगा, मतलब हम जानते भी थे और नहीं भी जानते थे, लेकिन आप ये बताइएगा कि आप जब UCP छोड़ के गई और आपने अपनी जगह डॉक्टर अख्यार फर्रुख को, जो कि गर्चे नए थे लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको आपको कहा था कि बड़ा अच्छा आपने रिप्लेसमेंट देके जा रही हैं, जो आप उनको बना के जा रही हैं एक्टिंग डीन के तौर पे, वो बताइएगा कि वो किस सिलसिले में था। मैं जाती सवाल नहीं कर रहा आपसे,
2: जी बिल्कुल,
0: वहाँ आपने कुछ चीजें एक्सप्लोर भी की होंगी जो आके आपने वापस FOST में अप्लाई की है। सवाल बहुत लंबा होगा, मुझे माफ कीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
2: जी सर, डॉक्टर अख्यार फर्रुख जो है वो स्पेशली जो हायर फैकल्टी मेंबर्स में से हैं, जब इन्होंने इनकी एक दफ़ा CV मैंने देखी तो शायद इन्होंने इतनी कोशिश नहीं की UCP ज्वाइन करने की जितनी मैंने कोशिश की कि ये ज्वाइन कर लें। तो ही वाज ऑलवेज माय फेवरेट फैकल्टी मेंबर, क्योंकि इनके अगर आप CV देखें तो ढेरों ढेर गोल्ड मेडल हैं कि हम खुद शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं। और उसके अलावा इनका कमर्शलाइजेशन में नाम है, नैनो साइंस में इनका नाम है, तो मुझे था कि ये रिसोर्स कहीं से हमारे पास आ जाए। तो उसी वक्त से मुझे था कि ये इतना अच्छा मतलब रिसोर्स है हमारा कि इनको उतनी ही मुझे भी इज्जत देनी चाहिए, तो उनको उनको हम उतनी ही यूटिलिटी भी करें। तो इमीडिएटली आफ्टर 2 वीक्स मैंने इनको डायरेक्टर PG अपॉइंट किया, और इन्होंने वाकई प्रूफ किया कि हमारी हर चीज़ स्ट्रीमलाइन कर दी, अलाइन कर दी। तो इनका अपनी क्रेडिबिलिटी थी, इनके इनका सा मेरा जो काम का था वो एक लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डेवलपमेंट थी वो हो चुकी थी, तो आई थॉट कि ही इज ओनली द बेस्ट पर्सन के जो कि मेरे पीछे से उसी तरीके से लेके चलेंगे, और जिस तरह मैं अपने मेरा पैशन है अपनी फैकल्टी को लेकर चलना, और तो इन्होंने ऐसा ही किया और मेरे साथ फुल कॉरेस्पॉन्डेंस भी रखी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले. तो ही वॉज द बेस्ट रिप्लेसमेंट एट दैट टाइम.
0: एट दैट टाइम यू प्रोसीडेड अब्रॉड.
2: यस
0: दैट्स राइट. डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि टू स्टेप इनटू द शूज ऑल ऑफ अ सडन ऑफ डीनशिप, हाउ डिड यू फाइंड इट?
1: That is maybe the difficult question.
0: That is why I'm surprised with
1: you. So, इसपे सर एक तो है कि I really thankful to Almighty Allah and then the Dean Dr. Hafsa Rizwana Kausar जिन्होंने मेरे ऊपर इतना trust किया. और मैं इसको समझता हूँ actually जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखें यहाँ पे मैं आया और मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के मुझे इज्जत यहाँ पे दी, ना सिर्फ डीन ऑफिस से, अपने कॉलीग से, एचओडी से, कहीं पे मैंने ये फील नहीं किया कि मैं शायद कोई अभी न्यू ज्वाइनर हूँ यहाँ पे. और एज अ, इसलिए हम FOST को एज अ फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम एक ही जैसे जो है वो नज़र आते हैं. तो सबसे पहले तो यही है कि ज़ाहिर बात है एक अपॉर्चुनिटी मेरे जहन में भी था कि अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया गया तो मैं इसको अपनी मैक्सिमम जो है इसको डिलीवर करूं. जब मुझे एज अ डायरेक्टर पीजी प्रोग्राम जो है वो बनाया गया तो वो मैंने किसी हद तक जो है वो अपनी तरफ से कोशिश भी की, कुछ चीज़ें थी हमने स्टेप भी ली हैं. जो डायरेक्टर पीजी प्रोग्राम है इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द डीन, इट इज़ नॉट द इंडिपेंडेंट द पोस्ट. तो यही वो चीज़ें थी, मेरा ख्याल है शायद मैडम ने यही से ऑब्जर्व किया हो कि क्योंकि सारी चीज़ें नौ है और इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो इसलिए मेरे ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया गया. और मेरा ख्याल है किसी हद तक मैंने इसको फुलफिल भी किया है, निभाया भी है,
0: खूबी से निभाया आपने. क्योंकि ज़ाहिर है कहते हैं वो तो जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग उस शू के नीचे आते हैं वो भी जानते हैं. आपने बड़ा खूब निभाया माशाल्लाह. अब सामी फिर दोबारा बढ़ते हैं क्योंकि यासिर साहब मुझे फिर दोबारा इशारा कर रहे हैं जैसे फुटबॉल में या बास्केटबॉल में टाइम आउट लिया जाता है, हथेली के ऊपर उंगली रख के उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं उनके इशारों पे चलता हूँ. लिहाजा कहीं मत जाइएगा, हम बढ़ते हैं मजीद एक ब्रेक की तरफ.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू द शो। हम दोबारा बढ़ेंगे डॉक्टर ज़वाना कौसर साहबा की तरफ, और आप जानते हैं कि हमारे इस शो का ये आखिरी चंक होता है, आखिरी सेगमेंट होता है, आखिरी हिस्सा होता है, ये तवील होगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब FOST के बारे में प्लीज अनअर्थ, अनफोल्ड योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट FOST। FOST के बारे में आपके जहन में क्या विजन है
2: जी,
1: उस पे बताइएगा
2: जी,
1: तफसील से बताइएगा
2: जी। जी थैंक यू सो मच सर। एक तो ज़ाहिर है एक्सपेंशन ऑफ द प्रोग्राम हम करते हैं, और वो मैंने जैसे बताया कि 2017 में हमारे पास सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स थे, तो मूविंग टू द 2020 हमारे पास 7 डिपार्टमेंट्स हो गए जब लाइफ साइंसेज और साइंसेज मर्ज की। तो उस वक्त जब हमारे पास ये 7 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें सिर्फ BS प्रोग्राम था, उसको हमने बढ़ाते हुए MPhil और PhD लॉन्च किया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं ताकि जो हमारे मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, लाइक DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, और वो हम एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च करना जा रहे हैं, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस पर हम MPhil लॉन्च करना जा रहे हैं। और जो आपने बात की कि विजन आप क्या रखती हैं, तो एक तो विजन सर जो होता है, जो हम एक रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं कि वो डेफिनेटली हर जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसका सेम ही मिलता जुलता होता है।
1: मैं आपसे वो नहीं पूछा, मैं
2: जहन में है, तो मैं वही बताने लगी हूँ कि जब 2022 में जब मैंने टेकअप किया, तो मैंने फैकल्टी से कहा ये वो विजन है जो कि हमने प्रेजेंट करना है, और एक वो विजन है जो मेरे दिल के अंदर है कि हमने अपनी फैकल्टी को उसमें जाना है, हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना है, कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना है, हमने उसको Generation 3 की यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जाना है जिसमें इंडस्ट्री हाउस करेगी UCP में। तो माशाल्लाह डॉक्टर ह्यार और भी हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि तकरीबन हमारा हाफ वे टू दैट विजन एंड मिशन। तो इंशाल्लाह मोर
1: फर्दर
2: अभी हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफी सारी कर ली है, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी टेस्टिंग हो गई है, क्वालिटी एश्योरेंस हो गई है, नाउ वी आर गोइंग टू द मार्केट टू सेल आवर प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमारा एक तख्लीक डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू वो उसको हम लॉन्च करेंगे मार्केट में। तो दैट इज अल्टीमेटली हमारा जो है गोल है, मिशन है कि हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल बनाएंगे ताकि वो वहां से अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे।
1: सो दैट आप यहां बताता चलूं, यहां मेरा ख्याल है कोई मेरे उसमें शेखी के उसमें नहीं आएगा, ये तख्लीक नाम मेरा ही दिया हुआ है।
2: अच्छा जी
1: जी, जो तख्लीक नाम जो आपका
2: सर, आपसे हमेशा हमें ऐसे ही लफ्ज मिलते हैं, और हमारे जो FOST का न्यूज़लेटर है उसका नाम भी डॉक्टर करार ने ही दिया था, क्वेस्ट का।
1: जी जी ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, आपका अभी तो हम आपके फील्ड में आ गए डॉक्टर साहब, ने अभी पूरे का पूरा जो टेनिस में कहते हैं ना, शी हैज शिफ्टेड द बॉल इनटू योर कोर्ट, आपका भी फील्ड आ गया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा, फिर उसके साथ ये भी बताइएगा, आपके हाल ही में आपने एक नया अभी चार्ज संभाला है, उसके बारे में बाद में बताइएगा, पहले ये इसके बारे में बताइएगा, डॉक्टर साहब ने बताया एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो जा रहे हैं।
3: जी जैसे डॉक्टर साहब मैडम ने आपको बताया कि FOST में ओवरऑल जो है वो जो प्रोग्राम्स हैं उनका इनिशिएटिव जो फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं, बड़ा डिटेल में इन्होंने बताया, और ख़ासतौर पे जो मेरा रोल रहा है जो फर्स्ट जो है अभी भी है FOST के अंदर, वो यही पोस्ट ग्रेजुएट ख़ासतौर पे प्रोग्राम्स को, और इनके ऊपर हमारा ये था कि इनकी जो मॉनिटरिंग है वो किसी तरह से हम इसको इन्हांस करें ताकि एक स्टूडेंट यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, उसकी रिसर्च के अंदर कोई इनोवेशन आए, क्वालिटी आए, ताकि वो जब ये यहाँ से ग्रेजुएट होके जाए उसको या तो उसको जॉब की तरफ वो मूव करे, उसको इजीली जॉब जो है एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर उसको आसानी हो। दूसरा ये है, फिर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको जो है वो उसका माइंड इनोवेटिव हो ताकि वो एज आ एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेके चला जाए ताकि वो अपना खुद से एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करे। तो आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि UCP में HEC की पॉलिसीज तो बाद में आई हैं, ये 2023 के अंदर जो है उसके बाद फिर हमने सारी यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट किया। हमने एक साल पहले इसका जो है पूरा इवेल्युएशन सिस्टम हमने बनाया कि कैसे एक अप्रूवल लेनी है सुपरवाइजर के लिए, सिनॉप्सिस سینپسس کا ایک پہلے وہ سیٹ اپ نہیں تھا, یہ یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہوتا. ہم نے اس کو لانچ کیا کہ وہ کیسے وہ بچے کو ہم پریکٹس کروائیں کہ وہ سینپسس بنائیں تاکہ اپنا وہ ایک آئیڈیا لے کے آئے جس کو اس نے پورا سال اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. اور پھر مین اس میں تھا کہ اب یہ آئیڈیا بھی آ جاتے ہیں, اس کو ان لائن کیسے کیا جائے, اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے, وہ ہم نے پالیسیز بنائی. اس کے اندر پھر ہم نے سیمینار ون سیمینار ٹو انٹروڈیوس کروایا تاکہ وہ پھر ہم ایک ایک سیمسٹر کے اندر ان سے ہم باقاعدہ ان کی پریزنٹیشن لیتے ہیں, پورا پینل وہاں پہ ہوتا ہے, ٹیچر اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کمی پیشی ہے, اس کے اندر وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے. پھر وہ فائنل ڈیفینس سے پہلے پھر ایک وہ پری ڈیفینس دیتا ہے تاکہ اس کی جو ریسرچ ہے اس کو بفور پریزنٹنگ ٹو دی ایگزامینر جو ہے اس کو ایویلویٹ کیا جائے, کیا وہ اس لیول کی نو ہے, اس نے اپنے جو آبجیکٹیو تھے اس کو میٹ کر لیے ہیں, اگر نہیں کیے تو وہ اس کو جو کمیٹی اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ ابھی اس کے اندر آپ نے یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ فلفل کرنے ہیں. تو یہ میں بتا رہا تھا, یہ ہم نے تقریباً کوئی ایک سال پہلے ہم نے اس پالیسی سے کیا. نو دس از اے پارٹ آف دی پالیسی, اب تو ایچ ای سی نے کر دیا, یہ ہمارے یو سی پی کے اندر کر دیا کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی. تو یہ تو تھا کہ جو کہ ہم نے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے شاید انہی چیزوں کو ان کوآرڈینیشن ود دا ڈین ہم نے ایف او ایس ٹی کو اتنا ہم نے ویزیبل کیا ہے کہ شاید ہم نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نو
4: سیلف سسٹینڈ بھی کیا
3: اور پھر ہم تاکہ اس کو جو ہے وہ نو وی کین پلے دا سیملر رول ایٹ دی یونیورسٹی لیول. اینڈ نو الحمد للہ آئی ایم دی ڈائریکٹر آف دی ریسرچ آف یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. تو اس کے اندر ہمارا وہ مین ہی ہے دا کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, اور اس کے اندر انوویشن ہے, اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جیسے میڈم نے کہا ایف او ایس ٹی کے اندر ہم نے جو اسٹارٹ کیا انٹرپرنور اور کمرشلائزیشن, یہ ہمارا فیوچر جو یونیورسٹیز کا ہے وہ اسی کے اوپر ہے. بچوں سے آپ کتنی فیس لیں گے, کتنا آپ انہائنس کریں گے, وہ سسٹینیبلٹی وہاں پہ نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ انڈسٹری کے ساتھ الائن کر کے ہم ان چیزوں کو کمرشلائز کریں, اور نہ صرف یہ کمرشلائز کریں بلکہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے یونٹ جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر لگا رہے ہیں. جیسے ابھی ایف او ایس ٹی میں میڈم نے ذکر کیا, ڈین ایف او ایس ٹی نے, کہ ہم نے فوڈ کے اندر جو ہے وہ پورا ایک چھوٹا سا ایک انڈسٹریل یونٹ وہاں پہ لگایا ہوا ہے جو کہ وہ تین ٹائپس کی جو پروڈکٹ ہے اس کی فارمولیشن وہاں پہ کر رہا ہے. تو اب وہ اتنا سکسیسفل ہے کہ وہ انڈسٹری اب اس کو دیکھ رہی ہے, انڈسٹری ہمیں خود اپروچ کر رہی ہے. آج بھی ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس کے اندر کال آئی کہ یہ فلاں جو ہے وہ فوڈ کا پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں بتائیں. تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب اتنا ہم اس کے اندر ہیں کہ نو دا انڈسٹری از لکنگ ٹوارڈ اس, کہ وہ ہمیں ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں ہم اس کو جو ہے وہ کتنا ڈلیور کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ سے ہمارے پاس جو خاص طور پہ فوڈ سائنس اینڈ فوڈ سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, فل پوٹینشیل اس کے اندر ہے, کیونکہ وہ سارا وہ یہ پروسیس اس کو پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا, پھر اس کو جو ہے اس کی مارکیٹنگ کرنا, اس کی پیکنگ, یہ ایوری تھنگ دے نو ڈیٹ. تو یہ ایک اسی چیز کو رکھتے ہوئے اب ہم کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے جو دوسری فیکلٹیز ہیں, جیسے فیکلٹی آف انجینئرنگ ہیں, فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس جو دوسری ریلیونٹ فیکلٹی, کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا سیٹ اپ ہے, 9 فیکلٹی ہمارے یو سی پی کے اندر جو ہے, اور چاہے وہ ہیومینٹی سوشل سائنسز کے اندر ہیں, ہم وہاں پہ بھی کیونکہ ابھی اے آئی کا دور ہے تو ہم ان چیزوں کو کنیکٹ کریں گے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہم بائی یوزنگ دا لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ ٹول جو ہے ہم اس کے اندر انوویشن لائیں تاکہ وہ بچے بھی اس سے لرن کریں, اور پھر انہیں کو یہیں سے ہم بزنس مائنڈ ان کو بنا کے بھیجیں تاکہ اپنا اپنا وہ چھوٹا چھوٹا یونٹ جو ہے لگا کے اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں.
1: جی بہت شکریہ اتنا تفصیل سے بتانے کا. میم کے یعنی ڈاکٹر زوانہ کوثر اور ڈاکٹر خیا فرخ کی باتوں سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا حفیظ جلندری کا, جب لوگ ان کو مانتے نہیں تھے گورنمنٹ کالج میں ایک مشاعرے میں آئے جلندر سے, تو انہوں نے ایک شعر بولا, انہیں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے بڑا موضوع ہے برجستہ ہے, کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. تو ایف او ایس ٹی ماشاءاللہ اپنے آپ کو زوروں سے منوا رہی. میم
2: جی
1: آخری چند منٹ ہمارے پاس ہیں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں ریکارڈر میں اتر بابر, میں ان کی نظریں پہچان رہا ہوں, کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز اے ڈین آف ایف او ایس ٹی
2: یو
1: ہیو اے ڈائیورس کلچر ورکنگ انڈر یو, یعنی میرے خیال پوری یونیورسٹی میں کسی بھی فیکلٹی میں اتنی خواتین نہیں ہوں گی.
2: جی
1: ایسے ہی ہے نا, تو آپ کس طریقے سے اس جینڈر بیلنس کو قائم رکھتی ہیں؟
2: تھوڑا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے.
1: جی بالکل,
2: کیونکہ بیلنسنگ از ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری کرتا ہے, اور کوئی کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں سر جس میں آل فیمیل فیکلٹی ممبرس آ جاتی ہیں اور کسی میں آل میل فیکلٹی ممبرس آ جاتے ہیں. तो ये हमेशा रिक्रूटमेंट के टाइप पे भी कोशिश मैं करती हूँ कि बैलेंस हो दोनों तरफ के, ताकि वो एक कंफर्ट लेवल भी होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ना सिर्फ फीमेल फैकल्टी मेंबर बल्कि हमारा तकरीबन 60-70% जो है स्टूडेंट जो है ना वो फीमेल हैं, तो इस वजह से उनको कंफर्ट जोन में काम करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए आई प्रेफर कि थोड़ा सा फीमेल फैकल्टी को भी उतना ही ऑन बोर्ड लिया जाए जितना कि मेल फैकल्टी मेंबर्स को भी लिया जाए। और जहाँ तक उनके जो इश्यूज होते हैं बैलेंस करने के लिए, उनको बैलेंस करना जो है इसमें अपनी लाइफ में और वर्क प्रोफेशन पे, इसमें मैं कहती हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ शायद एज अ डीन और चीज़ों पे तो ना हो, लेकिन इस चीज़ में ज़रूर है कि मैं उनको सुनती हूँ, उनके प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, उनको कॉन्फिडेंस देती हूँ। अब कई ऐसे फीमेल फैकल्टी मेंबर्स आती हैं जो कहती हैं कि 10 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो मैंने कहा क्या हुआ, बाहर के मुल्कों में जाके देखें जो गोरियां हैं वो 70-70 साल तक काम करती हैं, तो आप लोग अपने आप को इतना क्यों फील करते हैं कि भाई आप क्यों मर्द ही सिर्फ काम क्यों करें। इस तरह कोई मांगने वाले भी आते हैं, जी मेरा बंदा काम नहीं कर रहा या मेरे फादर की डेथ हो गई है मैं करें, तो मैंने कहा जब बंदा एक पूरा घर चला सकता तो औरत क्यों नहीं चला सकती। तो आई ऑलवेज ट्राई टू एम्पावर द वुमेन इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो उनको अब मैं कहती हूँ अपने आप पे तरस क्यों खाते हैं, मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरे पास आके अपने आप पे तर्स खाता है कि आपने तर्स नहीं खाना, आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं जो कि आप अपने घरों से निकलते हैं और नेशन को सर्व करते हैं। सो आई डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस विद देम।
1: बहुत खूब, आपने दो चीजों को यकजा कह दिया अगर मैं सही तरीके से बयान कर सकूं कि एमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, दोनों चीजों को आपने अमेलगमेट कर दिया और FOST का ये खासा है, तभी हर जगह ये नुमाया भी नजर आती है। डॉक्टर साहब आपने एक यहाँ इनिशिएटिव लिया AQI पाकिस्तान का, लाहौर का खासतौर पे, पंजाब का बहुत बड़ा मसला है, थोड़ा सा उसके बारे में मुख्तसर बताइएगा।
3: एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी सर आपको इसमें आई थिंक द UCP इज टेकिंग लीड ऑन दिस वन, नॉट ओनली मॉनिटरिंग, अब आपने देखे होंगे AQI लगा देते हैं मॉनिटरिंग तो वो ठीक है, डेटा कलेक्ट कर रहा है जी, हमने UCP में भी हमने लगाया हुआ है और इस तरह लाहौर के डिफरेंट जो है लगे हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है वो आपकी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक आपके पास जो है वो वहीकुलर मिशन है जो कि दिन ब दिन जो है वो आपके पास देखें टेम्परेचर जो है उसको भी इंक्रीज़ कर, ग्लोबल वार्मिंग आपके पास हो रही है, तो इसमें हमारा UCP ने हमेशा ये सोचा है कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं और लोकल सोल्यूशन क्या है, तो वो फिर हमने जो है वो एक हमने MOU साइन किया विद द दरीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैक इन 2022 विद द यूनिवर्सिटी एट अल्बानी USA के साथ, वो उधर एक्सपर्ट्स हैं एनवायरमेंटल के, हम भी इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो हमने भी एक जॉइंट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि वो एक्चुअली ओरिजिनल सोर्स क्या है, कि सिर्फ एक सोर्स नहीं है कि वहकुलर एमिशन आ रहा है, देर आर दी लॉट ऑफ दी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, फिर कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास चीज़ें हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, PM2.5 इज द मेजर प्लेइंग द रोल इन द स्मोक AQI के अंदर जो है, तो वो फिर हमारा ये था कि अब जब तक आपको एक्चुअली प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा आप सोल्यूशन कैसे देंगे, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने फिर UCP के अंदर हमने एक छोटा सा इक्विपमेंट लॉन्च किया, वो तकरीबन उसकी फंडिंग प्रोजेक्ट सी थी 4.2 जो है मिलियन जो है, तो वो हमें सारी की सारी जो है वो बाहर से फंडिंग में उसकी यूनिवर्सिटी एट अल्बानी, उन्होंने इक्विपमेंट हमारे पास भेजा इन्होंने यहाँ पे, तो हमने फिर यहाँ पे उसको इंस्टॉल किया। अब हम उसके अंदर जो है वो एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम जो है वो हम ये डेटा 24 आवर्स का हमने कलेक्ट किया स्मोक के दौरान और फिर स्मोक के सीज़न के बाद जो है, ताकि इन दोनों जो है सीज़न को हम जो है वो कंपेयर कर सकें कि एक्चुअली कौन से मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं पोल्यूटेंट्स हैं जो कि स्मोक को कॉज कर रहे हैं, तो अभी वो अंडर एनालिसिस में है, तो वो उसके बाद ये रिपोर्ट जब आएगी तो फिर हम इसको हेल्थ के साथ ज्वाइंट करेंगे कि और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे कि ये आपने ये स्टेप्स लेने हैं ताकि रेमेडियल मेजर जो है लेंगे।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत बात हो चुकी डिपार्टमेंट के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, सक्सेसेस के बारे में, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल बकौल सुहेल वड़ाइज के मासूमाना सवाल, वो ये है कि आपको पता है हर जिंदगी में खास में जहाँ खवातीन ज्यादा हों तो उसमें एक फन फैक्टर भी होता है
2: जी।
1: आप क्या समझती हैं कि FOST में क्या ऐसा फन फैक्टर है जिसको बाकी फैकल्टी से मुमताज करता है, क्या चीज आप लेके आती हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज करवाती हैं
2: जी
1: जी, टीचर्स को क्या मौके फराहम करती हैं
2: जी,
1: उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
2: जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि व्हाट्सएप का ग्रुप तो हर कोई बनाता है और प्रोफेशनल के नाम से बनाता है। जो हमारा फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नाम है FOST फैमिली। तो हम कोशिश करते हैं कि एक फैमिली की तरह रहें, और जो फैकल्टी मीटिंग्स होती हैं वो कभी भी सीरियस किस्म की नहीं होती। हालांकि उसमें पहले एक घंटे की सारी ब्रीफिंग मैं देती हूँ, जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं उन पर अप्रिशिएट सबको करती हूँ, और आने वाली जो चीज़ें हमने करनी होती हैं प्लान उनको भी हम करते हैं। बट एट द एंड एक मेजर सेगमेंट होता है हमारी फैकल्टी में जो कि गेम्स का होता है। तो हम इस तरह एंटरटेनमेंट का लेवल के जब भी लोग आते हैं तो उस वक्त नॉर्मल सीरियस मूड में ही होते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। कुछ ना कुछ हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, कुछ टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं, एक घंटा लंच करते हैं या रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम हमेशा फॉर्मल डिस्कशन नहीं करते, बल्कि हर बंदा अलाउड है कि अपनी फैमिली के बारे में भी शेयर करे। कोई एडिशन हुआ फैमिली में या किसी की शादी हुई है, कोई तो एवरीडे स्वीट्स चल रही होती है, तो ये कल्चर जो है उससे सबका दिल भी लगता है और हमें बड़ा मजा आ रहा है इकट्ठे सर्व करने का। यूसी
1: बहुत खूब, मैं यही आपसे कहवाना चाह रहा था। और एक चीज बताता चलूं आपकी इजाजत से कि हमने जो न्यूज़लेटर कायम किया हुआ है उसमें भी हमने एक अपना FOST फैमिलीज वेरी ओन हमने कॉर्नर रखा हुआ है।
2: ये आपका इनिशिएटिव था और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा।
1: इसमें हमें ये भी इम्तियाज हासिल है। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे भी तवालत बोरियत का बायस होती है, लेट अस कट इट शॉर्ट। मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा कि आप क्यों चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे FOST में मुख्तलिफ प्रोग्राम में दाखिल हैं, दो लाइन उनको पैगाम दें, यहाँ क्या चीज़ स्पेशल है जो बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती?
3: जी बस यही है, इसके अंदर हम फोकस भी करते हैं। वी आर नॉट ओनली टीचिंग दी स्टूडेंट, हम सिर्फ कोर्स कंटेंट को डिलीवर नहीं कर रहे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कोर्सेज को इंटरनेशनल मेरिट के मुताबिक उसको अलाइन किया हुआ है। और उसमें जो ख़ास खूबी है जो कि दूसरे प्रोग्राम या दूसरी यूनिवर्सिटी से हमें मोतबर करती हैं, वो ये है कि हम इसके अंदर जो पहले भी हमने जो डीन साहब ने भी और मैंने भी जिक्र किया, इसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और कमर्शलाइजेशन का है। क्योंकि आप इतने ग्रेजुएट प्रोड्यूस करके आप सबको जॉब नहीं दे सकते, तो हम जो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हमारे जो कोर्सेज हैं या उनकी जो है वो वे ऑफ टीचिंग जो है वो इस तरह की हो ताकि उनका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो हो, ताकि वो जब जाए तो जॉब उसके पास ही है, वो दे कैन अप्लाई एनीवेयर, लेकिन उनके पास एक ये भी एडिशनल कैपेसिटी हो ताकि वो जहाँ पे भी एक छोटा सा अपने लेवल के ऊपर, चाहे वो 1,00,000 से भी है उसके पास है, तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो ये आई थिंक दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वी आर टीचिंग और वी आर ऑफरिंग ओवर हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ द सेंट्रल पंजाब एट फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
1: इसी के साथ ही सामने हम एक खत्म की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको FOST में बहुत सी चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे दे दिया, मुतबिर करती हैं, मुमताज़ करती हैं, इम्तियाज़ बख्शती हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ। और आपको भी बार बार कहता हूँ कि हमारा जो फेसबुक पे है, हमारा जो एक फेस बनी हुई है, खुदारा अपनी आरा का इजहार कीजिए ताकि हमें इल्म हो कि हमारे में कौन सी कोताहियाँ हैं, हम उन पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। डॉक्टर रिजवाना साहिबा आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर ख्यार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने नहायत ऐसे तरीके से FOST और UCP के प्रोग्रामों को अवामुन्नास तक पहुंचाया। आखिर में हम नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
1: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन,
1: यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया,
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए,
1: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: करोगे?
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें,
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
2: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए, सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: मेरे मजे सुनने वालों, वेलकम बैक टू द शो, नन अदर देन FOST फैकल्टी आवर। और अब मैं बढ़ूंगा अपने दूसरे मेहमान की तरफ, डॉक्टर अख्यार फारूक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आपसे भी वही सवाल होगा मेरा कि अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताइए सामईन की दिलचस्पी के लिए।
1: जी शुक्रिया सर। जैसे मैंने पहले क्या है कि ये मैंने PhD जो है वो केमिस्ट्री में की है, तो बेसिकली आई एम द केमिस्ट, और उसके अंदर फिर सब ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और इसी से लिंक करते हुए फिर हमने जो है वो जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, डैट इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा रोल है इसके अंदर, इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको जो है वो फॉर्मुलेशन के अंदर जो है, तो इसी एरिया के अंदर जो है वो हम तकरीबन को पिछले 15 साल से इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द पायनियर हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड इन पाकिस्तान। और इसी को फिर देखते हुए जो है वो मैंने तकरीबन कोई 25 कंट्रीज़ होंगे दुनिया के जहाँ पे मैं फेलोशिप्स के ऊपर अपने जो मकाला जात है उनको पढ़ने के लिए मैं गया। और उसके बाद जो है फिर इसी रोल को देखते हुए कुछ नेशनल इंटरनेशनल मेरे पास भी रोल हैं, जैसे मैं जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो टेक्निकल कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, PSQCA का अदारा है, और उसका मैं चेयरमैन हूँ। फिर इंटरनेशनल देखते हुए ISO की एक नैनो टेक्नोलॉजीज की कमेटी है, उसके अंदर मैं मेम्बर हूँ। तो इस तरह मैं जो नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल रोल प्ले कर रहे हैं जो UCP की प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड, उसके अंदर जो हमारा बेसिक इंटरेस्ट है, जो मेन इंटरेस्ट है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। तो वो हम कोई एग्रीकल्चर साइट के ऊपर है, कुछ नैनो कॉस्मेटिक्स के ऊपर है, नैनो फ्रेंसिक्स के ऊपर है, नैनो एंटीबायोटिक्स ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर है। तो ये हम इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इसका जो है वो हम UCP के अंदर भी हम जो है वो ज़्यादा हमारी इंटेंशन यही है कि हम प्रोडक्ट फार्मूलेशन के ऊपर जो है हम फोकस करें बाय यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी और द न्यू इन्वेंशन विच वी आर वर्किंग विद इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द सेंट्रल पंजाब। तो ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ है मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट।
0: बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रिजवाना से सवाल करने से पहले एक और चीज मुझे याद आई, आप जानते हैं मेरा भी ताल्लुक फिजिक्स से है, और डॉक्टर साहब ने बताया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, आप जानते हैं आइंस्टाइन के ये दो उनकी खसूसियात थी, एट्रीब्यूट्स थे, उन्होंने जो है आप जानते हैं सारे, पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। और आइंस्टाइन दुनिया के वाइस साइंसदान हैं जिन्होंने बगैर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हुए, सिर्फ उन्होंने जो लिखा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस पर उनको 1921 का नोबेल प्राइज मिला। तो मैम ये मेरा रابطہ आपसे हो गया इस मामले में, फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री दे मूव यू नो विद वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा हटके एक सवाल, शायद आप नहीं तवक्को कर रही होंगी, मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अचानक ही हमें पिछले सेमेस्टर में पता लगा कि आप 6 महीने की छुट्टी पे जा रही हैं, आप अपना जो है एक सेमेस्टर ऑफ ले रही हैं। नहीं पता लगा, मतलब हम जानते भी थे और नहीं भी जानते थे, लेकिन आप ये बताइएगा कि आप जब UCP छोड़ के गई और आपने अपनी जगह डॉक्टर अख्यार फर्रुख को, जो कि अगरचे नए थे लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको आपको कहा था कि बड़ा अच्छा आपने रिप्लेसमेंट देके जा रही हैं, जो आप उनको बना के जा रही हैं एक्टिंग डीन के तौर पे, वो बताइएगा कि वो किस सिलसिले में था। मैं एक जाती सवाल नहीं कर रहा आपसे,
2: जी बिल्कुल,
0: वहाँ आपने कुछ चीजें एक्सप्लोर भी की होंगी जो आके आपने वापस FOST में अप्लाई की है। सवाल बहुत लंबा होगा, मुझे माफ कीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
2: जी सर, डॉक्टर अख्यार फर्रुख जो है वो स्पेशली जो हायर फैकल्टी मेंबर्स में से है, जब इन्होंने इनकी एक दफ़ा CV मैंने देखी तो शायद इन्होंने इतनी कोशिश नहीं की UCP ज्वाइन करने की जितनी मैंने कोशिश की कि ये ज्वाइन कर लें। तो ही वॉज ऑलवेज माई फेवरेट फैकल्टी मेंबर, क्योंकि इनकी अगर आप CV देखें तो ढेरों ढेर गोल्ड मेडल हैं कि हम खुद शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं। और उसके अलावा इनका कमर्शलाइजेशन में नाम है, नैनो साइंस में इनका नाम है, तो मुझे था कि ये रिसोर्स कहीं से हमारे पास आ जाए। तो उसी वक्त से मुझे था कि ये इतना अच्छा मतलब रिसोर्स है हमारा कि इनको उतनी ही मुझे भी इज्जत देनी चाहिए, तो उनको उनका हम उतनी ही यूटिलिटी भी करें। तो इमीडिएटली आफ्टर 2 वीक्स मैंने इनको डायरेक्टर PG अपॉइंट किया, और इन्होंने वाकई प्रूव किया कि हमारी हर चीज़ स्ट्रीमलाइन कर दी, अलाइन कर दी। तो इनका अपनी क्रेडिबिलिटी थी, इनका सा मेरा जो काम का था वो एक लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डेवलपमेंट थी वो हो चुकी थी, तो आई थॉट कि ही इज ओनली द बेस्ट पर्सन के जो कि मेरे पीछे से उसी तरीके से लेके चलेंगे, और जिस तरह मैं अपने ये मेरा पैशन है अपनी फैकल्टी को लेके चलना, और तो इन्होंने ऐसा ही किया और मेरे साथ फुल कॉरेस्पॉन्डेंस भी रखी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो ही वाज द बेस्ट रिप्लेसमेंट एट दैट टाइम।
0: एट दैट टाइम एंड यू प्रोसीडेड अब्रॉड।
2: यस
0: दैट्स राइट, दैट्स राइट। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि टू स्टेप इनटू द शूज ऑल ऑफ अ सडन ऑफ डीनशिप, हाउ डिड यू फाइंड इट?
1: That is maybe the difficult question.
0: That is why मैंने कहा था मुझे surprise मिलूंगा
1: आपको। तो इसपे सर एक तो है कि I really thankful to Almighty Allah and then the Dean Dr. Hafsa Rizwana Kausar जिन्होंने मेरे ऊपर इतना trust किया। और मैं इसको समझता हूँ actually जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखें यहाँ पे मैं आया और मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के मुझे इज्जत यहाँ पे दी, ना सिर्फ डीन ऑफिस से, अपने कॉलीग से, एचओडी से, कहीं पे मैंने ये फील नहीं किया कि मैं शायद कोई अभी न्यू ज्वाइनर हूँ यहाँ पे। और एज अ इसलिए हम FOST को एज अ फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम एक ही जैसे जो है वो नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि ज़ाहिर बात है एक अपॉर्चुनिटी मेरे जहन में भी था कि अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया गया है तो मैं इसको अपनी मैक्सिमम जो है इसको डिलीवर करूं। जब मुझे एज अ डायरेक्टर पीजी प्रोग्राम जो है वो बनाया गया तो वो मैंने किसी हद तक जो है वो अपनी तरफ से कोशिश भी की, कुछ चीज़ें थी हमने स्टेप भी लिए हैं। डैट जो डायरेक्टर पीजी प्रोग्राम है इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द डीन, इट इज़ नॉट द इंडिपेंडेंट द पोस्ट। तो यही वो चीज़ें थी, मेरा ख्याल है शायद मैडम ने यही से ऑब्जर्व किया हो कि क्योंकि सारी चीज़ें नौ है और इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो इसलिए मेरे ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया गया। और मेरा ख्याल है किसी हद तक मैंने इसको फुलफिल भी किया है, निभाया भी है,
0: खूबी से निभाया आपने। कि ज़ाहिर है कहते हैं वो तो जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग उस शू के नीचे आते हैं वो भी जानते हैं। आपने बड़ा खूब निभाया माशाल्लाह। अब सामईन फिर दोबारा बढ़ते हैं क्योंकि यासिर साहब मुझे फिर दोबारा इशारा कर रहे हैं जैसे फुटबॉल में या बास्केटबॉल में टाइम आउट लिया जाता है, हथेली के ऊपर उंगली रख के उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं उनके इशारों पर चलता हूँ। लिहाजा कहीं मत जाइएगा, हम बढ़ते हैं मजीद एक ब्रेक की तरफ।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: صوفی سینگز هو That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर एसएमएस करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या एसएमएस के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। बीटीए

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 यूसीपी की दुनिया।
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए,
3: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6